0: cricket. In India, it's more than a sport. It's closer to a religion. From dusty streets to shiny sold-out stadiums, millions watch and play. Yet, it's long been a man's game, while women's cricket faced dire neglect.
1: Number of matches nahi the, facilities nahi thi, wajah se pressure hamesha rehta tha, kya hum upper level ka cricket khel payenge, nahi khel payenge.
2: There were no spectators. No one knows that women cricket exists.
0: But a radical change has unfolded in India. A World Cup win for the national women's team and a glitzy new league worth more than $100 million.
3: I was at the World Cup final, seeing that packed stadium, thinking, I don't know when this change has happened.
2: A lifetime achievement.
0: 101 East follows India's women cricketers as they emerge from the shadows and into the spotlight. On a chilly morning in the northern Indian city of Chandigarh, Tanisha Singh is getting ready for a match. She's leading the Delhi under-23 team at the prestigious national championship.
4: So my dream will be to play from India and world ki sabse best all-rounder banu.
0: One way to fast-track that dream is to get selected for India's Women's Premier League or WPL.
5: We are at a junior girls tournament where teams from across the country have come to play. But there's more at stake here than just this tournament, because here the girls are hoping that they'll be picked by some of the big Premier League teams, and the auction is just days away.
0: The WPL, in its fourth season, is already the richest women's cricket league in the world and the second most lucrative women's league in any sport globally. Tanisha's name is on the list from which clubs will bid for players in an auction. But this morning, her focus is on the match.
4: मैं नहीं सोच रही हूँ. It just ऐसा है कि अगर मेरा नाम आएगा, मुझे तब भी मेहनत करनी है. और मेरा नाम नहीं भी आएगा, मुझे तब भी मेहनत करनी है.
0: It was Tanisha's father who introduced her to cricket.
4: मैं 9-10 साल की थी और मैंने पापा की वजह से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था. हम घर में कजन्स ये सब बहुत सारे कजन्स थे तो हम गली में क्रिकेट खेलते थे फुटबॉल खेलते थे तो तब से शौक आ गया था क्रिकेट खेलने का.
0: But she soon realized it was rare for girls to play.
4: और कोई लड़की नहीं थी, just मैं ही थी and लड़कों के साथ खेलती थी. Basically एक टूर्नामेंट हुआ था सर और वहाँ पे कोई लड़की अलाउड नहीं थी, but मेरे सर थे पंकज सर और स्कूल में ट्रेन करते थे मुझे बॉलिंग का ही. तो उनकी वजह से मैं वो टूर्नामेंट खेली थी एंड मैंने बहुत अच्छी फील्डिंग करी थी, उस वजह से मुझे एक अवार्ड मिला था. मुझे ऐसा फील होता था कि लड़कियों की टीम ही नहीं है. मैचेस भी देखे हैं तो लड़कों के ही मैचेस देखे हैं, वो विराट कोहली के, सचिन तेंदुलकर के. बट जितना मैं खेलती रही मुझे पता चला कि हाँ लड़कियाँ भी खेलती है, तो तब पता चला कि हाँ यार लड़कियाँ भी स्विंग करती है बॉल, स्पिन करती है बॉल.
0: It was only when she started playing for Delhi's under-16 team that Tanisha found herself batting and bowling alongside other girls. But things were much bleaker for her coach Latika Kumari. When Latika played for the national team, she was only paid a token amount and the matches were few and far between.
1: क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट्स भी बहुत रेयर होते थे. सिर्फ वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप होता था, बीच में एक दो सीरीज हो गई तो हो गई. वी यूज्ड टू स्टे इन वन हॉल लाइक 5-6 टीम्स एंड यूजिंग 2 or 3 वॉशरूम्स एंड खाने का भी इतना हाइजीनिक नहीं रहता था. हम लोग अपनी बेडिंग खुद लेके जाते थे, किडबैग्स को पिलो की तरह यूज़ करके फर्श पे ही सो रहे हैं. नाउ दीज डेज मोर प्रोफेशनल लेवल पे सारी चीज़ें हो रही हैं. कोचिज बोल लो आप, एसेंसीज हैं, फिजियोज हैं, तो स्टेडियम्स में आ रहे हैं, प्यार दे रहे हैं. और टीवीज पे हम, टीवी वगैरह पे हम लोग आ रहे हैं, जो कि सपना ही था हमारे लिए कि हम कभी दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे.
5: डू यू ever wish that you were a young cricketer right now?
1: Of course, why not? Because wo dream tab bhi tha, hum log ne represent kiya country ko, but aaj ke time mein agar hum log hote to maybe hum bhi keh sakte hain ki logo ko dikh rahe hote abhi.
0: Sneha Rana is a player who has seen both worlds. She made her debut for the Indian team in 2014 and has toiled in anonymity for most of her career. But winning the 2025 World Cup has transformed her into a household name.
2: Hello.
5: Hello. So nice to meet you.
2: Thank
5: and congratulations
2: you.
5: On the World Cup win.
2: Thank you so much.
5: So excited to be here with you.
2: Thank you so much. Welcome, welcome.
5: This is your house? This is where
2: yes,
5: you grew up?
2: Yes, yes.
5: Okay.
2: This is our village, Sinola.
5: Okay.
2: So here I grew up. I have a joint family, as you can see.
5: Okay. And everybody's playing cricket.
2: Yes. They are very fond of cricket. See there, little master.
5: Little master. Perfect. With a very small bat.
2: Yeah.
0: We meet Snehe on a rare break at her home in Dehradun, a city in the foothills of the Himalayas.
5: Of course, winning the World Cup is the pinnacle of anybody's cricketing career. But personally, what does it mean for you to lift that cup?
2: It was a very huge and special moment because all this time we have prepared for that thing and we have dreamt of lifting the World Cup trophy since many years. Lifting that trophy, it means the world to us. See, it will definitely bring a huge change in women's cricket. Moreover, the perspective of people and those parents who think that there's no career in cricket, I think the mindset will change. I think many parents will give freedom to their girl child to take up the sport.
0: Though she received nothing but encouragement from her family to follow her dreams, the story of Sneha's beginnings in cricket has a familiar ring.
2: तो हमारी बहुत बड़ी फैमिली है और सिक्स फैमिलीज टुगेदर और हम लोग बहुत सारे कजिन्स थे और यही ग्राउंड पे हम लोग खेलते थे. वी हैड अ ग्राउंड नियर बाय अर्लियर और तो हम वहाँ पे टूर्नामेंट्स खेलते थे आपस में. एंड आई वाज द ओनली गर्ल बाय द वे. अकेडमी थी लिटिल मास्टर, तो वो खेलने के लिए आए थे यहाँ पे मैच और उनका मैच हमारे गांव के जो 11 होती है उनके साथ था. एंड आफ्टर दैट मैच उन्होंने जो हमारे टीम थी तो उन्होंने बोला कि हमारे गांव में एक लड़की है और वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, आप उसको प्लीज़ देख लीजिए. एंड बाय द वे आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट दैट टाइम, तो मैं वहाँ पर पास में एक पेड़ था और मैं उसके पीछे जाके छुप गई. सो आई वॉज लाइक कि नो नो नो आई डोंट वॉन्ट टू प्ले, ये ऐसे ही बोल रहे हैं. सो दे वर लाइक कि नो कम एंड एक बॉल. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आई अपने अंदर एंड देन आई वेंट एंड आई बोल्ड वन ओवर एंड विकेट भी ली थी मैंने उसमें और एंड आई प्लेड वन ओवर. सी बींग अ वुमेन क्रिकेटर आई थिंक एवरी फेस पे चैलेंज है. पहले तो घर से बाहर निकलने का वो बैरियर था. सेकंड था आप क्रिकेट खेल रहे हो बिकॉज उस टाइम पे सब बोलते थे ये बॉयज़ का गेम है, यू कांट प्ले क्रिकेट प्रोफेशनली तो बिल्कुल भी नहीं. सो माय पेरेंट्स हैव हर्ड ऑल दोज क्रैप्स.
0: इवन अ स्नेहस टैलेंट टुक हर हायर एंड हायर एंड इनटू द नेशनल टीम, हर स्ट्रगल्स कंटिन्यूड.
2: सी पहले पैसा बहुत कम था वेमेंस क्रिकेट में. अगर मैं बात करूँ डोमेस्टिक की तो इट वाज लाइक अराउंड 1200 रुपीज़ पर मैच. इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेक करियर.
0: थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज व्हेन द इंडियन वेमेंस टीम अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस रीच्ड द फाइनल ऑफ द 2017 वर्ल्ड कप, फोर्सिंग पीपल टू नोटिस देम. The next big change came with the Women's Premier League in 2023, followed by the World Cup win 2 years later. In 2022, the sports governing body announced equal pay for international matches. This was expanded to domestic games after the 2025 World Cup win. But with fewer matches scheduled for women, men can still earn up to 10 times more.
2: पहले फ्री टिकट्स होते थे विमेंस मैचेस के लिए बट नोबडी रियली शोड अप. नाउ स्टेडियम्स आर फुल, वी सी दे आर लिटरली फाइटिंग फॉर द टिकट्स.
0: At the academy where Snehe started her journey, a young girl is learning the basics of the game. Vedika, who is 6, is following in the footsteps of her brother Shaurya.
6: Again, kaba drive karengi? Udhar jao. Kaba drive. Nice shot, shabash, shabash. Thoda, thoda. Baller ko dekhe samne. Aur apna footwork istemal karke seedha straight drive karenge aap. Theek hai na? Okay, straight drive. Beautiful, shabash. Abhi kaba drive karenge?
7: Pair theek kar rahe to girana mat bachcho ko.
0: When training ends, their father comes to pick them up and invites us back to the family's home.
8: कुछ खाना है लो ले लो बिस्किट वगैरह लो
9: मेरा फेवरेट प्लेयर स्नेहा राणा है
10: क्या सिखाती
9: है मतलब जैसे जब ये बैटिंग करती है जब मैं बोलता हूँ सीधे करिए बैट इसका पीछे जाता है कह दीजिए मैं सही डाल दी अगर सर मेरे को टोकेंगे तो मैं तो तब सही करूंगी
0: The sibling's father, Vimal Rajput, wanted his son to learn cricket and enrolled him at the academy.
11: Vedika ka aisa hua, isko chhodne gaya saath mein, main bolu isko bhi yahi chhod de. Main nahi ma'am, nahi chhod paunga main. To maine ma'am aapko pareshan kar degi. Ki nahi main bol rahi hu, main isko sambhal lungi, handle kar lungi. Bas darte darte chhoda. Aaj hai ki turant jaate hain ye cricket ke naam se. स्कूल से आएंगे अपना फटाफट काम करना सब करना और क्रिकेट जाना है
12: तो जिस टाइम पे हमारा कॉलेज है स्कूल का टाइम था उस टाइम तो अपॉर्चुनिटीज मैं इतना नाम सुना ही नहीं था कि वुमेन्स का क्रिकेट होता है एक्चुअली मैंने मैचेस देखे हैं जैसे हमारी स्मृति मंदाना जी हो गई स्नेहा राणा है तो इनको देखती हूँ तो अभी लास्ट जैसे मैच हुआ था जो ये जीती है इंडिया तो इसमें इन्होंने हरमन जो इनकी कैप्टन है उन्होंने जो लास्ट कैच किया था तो वो तो आउटस्टैंडिंग मतलब वो तो तारीफ उनकी जितनी की जाए उतनी कम है तो वो चीज़ें हैं ये चीज़ें देख के एक प्राउड फील होता है कि हमारे घर में भी बेटी है तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटी भी उस तरीके से अपना नाम रोशन करे
0: इंडिया इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ क्रिकेट एकेडमीज़ वेयर द नेक्स्ट जनरेशन